धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव नमः पार्वती पते हर हर महादेव गंगा मैया की अविनाश की माता अन्नपूर्णा की उदयमान सूर्य की समस्त देवी देवताओं की समस्त संत महात्मा ऋषियों की हर हर महादेव।

आपके सामने हमारे भारत का संघा गंगज का एक रचना है, गंगा भागी व्यक्ति, गंगा भागी व्यक्ति निर्मा तो भरी करता खबर था समा भारत को हमारे देश का पावन भूमि का पूर्ण सभी के विशिष्टता अवतारी अवतारी माता जीवन को आता जीवन को आता जीवन को गंगा भव गंगा भव